0: रेडियो दिनरात 93.6 FM टू लाइट अप योर वर्ल्ड.
1: लैंप पोस्ट ब्रॉट टू यू बाय रिवाइव.